0: हैप्पी संडे क्राइस्टचर्च, कैसे हैं आप सभी? रेडियो गजे का साथ है, मैं आपका साथी आरजी कृष्ण। जी हां, हर संडे की तरह एक बार फिर हम जुड़ चुके हैं। कैसा गया आप सभी का वीकेंड फ्राइडे से लेकर अभी तक? वेल, डोंट आस्क मी और डोंट आस्क अस, बहुत बिजी था, पर चलो आप लोगों की मेहरबानी है और ऊपर वाले की दया है, इसीलिए तो वापस आ जाते हैं आप लोगों से मिलने के लिए। जितने लोग हमारे साथ उधर 96.9 के माध्यम से जुड़ रहे हैं, आपका भी हम स्वागत करना चाहते हैं। स्पेशल शाउट आउट टू क्राइस्टचर्च मेन प्रिजन के सबसे फेवरेट रेडियो स्टेशन, जी हां, रेडियो केजे लोकल। हे गाइस, व्हाट्स हैपनिंग? नीरज और आपकी टीम, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपने गीत की फरमाइश की है। डोंट वरी, वी हैवंट फॉरगॉटन, आई फॉरगॉटन द सॉन्ग बट वी हैवंट फॉरगॉटन टू प्ले इट। सो जरूर 6:30 के बाद हम ये प्लेंगे, पर आज हमारे स्टूडियोज काफी भरा पूरा है। जी हां, आरजे जी भी वापस आ चुकी हैं। आरजे जी के साथ हमारे साथ आज कुछ गेस्ट भी है, हम इनसे भी बात करते चलेंगे। सबसे पहले आरजे जी, हाउ आर यू? कैसे हैं?
1: आई एम वेरी गुड। एक और बार गुजरात की मिठास और केरला के तीखे अंदाज के साथ आपकी प्यारी, आपकी दुलारी, सीधी सादी, भोली भाली आरजे जी और फीजी के खट्टेपन के साथ आरजे क्रिश आपका रेडियो केजे लोकल पर स्वागत करना चाहते हैं। जी हाँ, वापस आ गई ऑकलैंड से। काफी ही बिजी टाइम था ऑकलैंड में। वैसे आपको, जिनको पता है, मिसेस इंडिया न्यूजीलैंड आ रहा है 13th of March को। अगर आपने एनरोल नहीं किया है, अगर आप शादीशुदा हो या डिवोर्सी हो या शादी करने का प्लान हो,

0: वर्सेस इंडिया न्यूजीलैंड में जरूर एनरोल कर लेना, हैपनिंग ऑन 13th of March।
1: आप लोगों ने कभी मिस्टर इंडिया न्यूजीलैंड लाने के लिए सोचा है?
0: आई थिंक
1: क्योंकि काफी शादीशुदा लोग हैं जो मिस्टर इंडिया बनना या मिस्टर न्यूजीलैंड बनना चाहते
0: हैं। बिल्कुल क्रिश जी, आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि जब हम ये टीम से कल मुलाकात हुई थी हमारी इनकी ऑकलैंड से, ये लोग सोच रहे थे कि नेक्स्ट टाइम एक्चुअली ये मिस्टर इंडिया न्यूजीलैंड लेके आने की कोशिश करेंगे।
1: चलो कोई नहीं, अगर हम पार्ट लेंगे और जीत जाएंगे तो अलग प्रॉब्लम होगा ना।
0: वो भी है।
1: कोई नहीं, यही हंसी मजाक होगा। पर चलो, हमारा जो फ्राइडे का संडे का शो है, वेयर प्रोबब्ली द फाइनल टाइम बिफोर वी हिट ऑन आवर 19 सितंबर को रामायण, याद रखिए रामायण जो 19 सितंबर को हो रहा है, और वी रिमेंबर द वेरी फर्स्ट टाइम जब हम वी स्टार्टेड द शो संडे शो, एंड दिस इज नॉट द फाइनल संडे शो बाय द वे, पर प्रोबब्ली द लास्ट टाइम जब हम रामायण के जो स्पॉन्सर्स है इनके बारे में बात कर रहे हैं। 19 सितंबर को जो हो रहा है इस सोल्ड आउट शो, अगर आपने टिकट नहीं लिया अनफॉर्चुनेटली यू मिस्ड आउट, पर ये शो हम आप तक लेकर आ रहे हैं इनजेड मोबाइल मॉर्गेजेस एंड इंश्योरेंसेस। याद रखिए नाम जरूर याद रखिए, इनजेड मोबाइल मॉर्गेजेस एंड इंश्योरेंसेस। अगर आपको मॉर्गेज की जरूरत है, रोबिन एंड इनके टीम बिल्कुल तैयार रहते हैं। इंश्योरेंस, वेल वेरी इंपॉर्टेंट, आज हम किसी से बात कर रहे थे जिनको इंश्योरेंस की जरूरत है, तो मॉर्गेज हो या इंश्योरेंस हो एक नाम जरूर याद रखिए, इनजेड मोबाइल मॉर्गेजेस एंड इंश्योरेंस रन बाय रोबिन एंड हिज अमेजिंग टीम।
0: एंड हम तहे दिल से आप लोगों को थैंक यू कहना चाहते हैं, शुक्रिया कहना चाहते हैं, क्योंकि रॉबिन फ्रॉम एनजेड मोबाइल मॉर्गेजेस एंड इंश्योरेंस, आप लोग बेस्ड इन ऑकलैंड हो, जब हमने आपको अप्रोच किया रामायण के बारे में, एक बार भी आपने हमसे कुछ नहीं पूछा, और द फर्स्ट आंसर वॉज येस, सो थैंक यू सो मच। एंड फाइनली वी गेट टू सी यू नेक्स्ट वीक, एक्चुअली इन 6 days यू गाइज आर कमिंग टू क्राइस्टचर्च, सो थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट। साथ ही साथ चलो चलते हैं हमारे सिल्वर स्पॉन्सर की तरफ, माया फूड 320 कैशल स्ट्रीट। अब अगर आप इंडियन ग्रोसरी के बारे में सोच रहे हो, सिर्फ इंडियन नहीं, अभी तो काफी ज्यादा वेराइटी ऑफ ग्रोसरीज एंड आइटम्स है।
1: जी हाँ, बिल्कुल, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो जिस तरह का भी ग्रोसरी आपको पसंद है, या फिर फ्रोजन फूड या फ्रेश फूड, सब कुछ वहाँ, फ्रूट्स वेजेस सब कुछ मिलता है।
0: हम तो हर मैंगो के सीजन में माया फूड्स चले जाते हैं, पर अगर आपने अब तक नहीं गए हो तो जरूर ट्राई कीजिए माया फूड्स। एंड साथ ही साथ आरके बेंच टॉप, अगर आप घर को रिनोवेट करने का सोच रहे हो, घर बनाने का सोच रहे हो, और किचन में एक परफेक्ट बेंच टॉप चाहिए, तो आपको जाना है आरके बेंच टॉप्स।
1: जी हाँ, बिल्कुल, और याद रखिए माया फूड्स में सिर्फ वेजेस ही नहीं, जितने हमारे नॉन वेज लवर्स है, जितने सी फूड लवर्स है, आप लोगों के लिए भी वहाँ पे कुछ ना कुछ उपलब्ध है। तो नॉन वेज आपको फ्रेश लेम आपको, या फ्रोजन लेम, या इसके साथ साथ अगर सी फूड में फिश, क्रैब, प्रॉन्स, ये सब कुछ आपको मिलेगा।
0: चलो चलते हैं हमारे ब्रॉन्ज स्पॉन्सर की तरफ, रे प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। हार कौर जी कैसे हैं आप? कुछ टाइम हो गया आपसे मुलाकात होकर, बट 6 दिन में हम मिलेंगे जरूर। अगर आपके पास एक रेंटल प्रॉपर्टी है जो आपको झंझट नहीं लेना उसे संभालने का, तो जस्ट फोन उठाइए और कॉल कीजिए हार कौर जी को, बिकॉज शी विल लुक आफ्टर योर रेंटल प्रॉपर्टी। और इफ यू आर लुकिंग फॉर अ रेंटल प्रॉपर्टी, काफी मुश्किल होता है ढूंढना, उसके लिए भी हार कौर जी आपको फ्रॉम रे प्रॉपर्टी मैनेजमेंट हेल्प कर सकती
1: है। चलिए बात करते हैं हमारे सारे सपोर्टिंग स्पॉन्सर्स को, टच एंड ग्लो जो हमारे फ्राइडे शो में भी हमारे साथ, जेस एंड योर टीम, थैंक यू सो मच। और आपको भी अगर अभी इस फेस्टिव सीजन में, जस्ट अराउंड गरबा आ रहा है, काफ़ी सारी दिवाली आ रहा है, दुर्गा पूजा आ रहा है, फिर विल बी इन क्रिसमस, सो अगर आपको भी ग्लो करना है जहाँ पर, वेल इंटरनेशनल ब्रांड्स कोरियन प्रोडक्ट्स, इसके लिए आपको टच इन ग्लो जाना है। और जब भी पोथीचोर के बारे में हम जब बात करते हैं, अब तो इनका एक ब्रांच रॉलस्टन में खुल चुका है,
0: मुंह में पानी आ रहा है क्रिश जी। अगर आप,
1: वी शुड गो देयर आफ्टर द शो।
0: जी बिल्कुल, अगर आप साउथ इंडियन फूड के फैन हो, स्पेशली पोथीचोर, डोसा, इडली, चिकन बिरयानी एंड एवरीथिंग, इवन वेजिटेरियन ऑप्शन, तो आपको ट्राई करना है पोथीचोर, बिकॉज अगर आपने यहाँ का खाना नहीं ट्राई किया तो क्या ट्राई किया, सो डू गो एंड ट्राई पोथीचोर।
1: और इनके साथ साथ अंशुज रियल फ्रूट आइसक्रीम, वेल समा इज जस्ट अराउंड द कोना, तो आप समना में जा सकते हैं जहाँ पर समना में ये बेस्ट रहता है। इसके साथ साथ आइसक्रीम, वेल फ्रेश फ्रूट आइसक्रीम, स्पेशली समा में कुछ और ही बात होती है ना।
0: जी
1: डू लाइक आइसक्रीम?
0: आई लव आइसक्रीम, स्पेशली अंशु आंटी का बना हुआ वाला आइसक्रीम। लास्ट ईयर हम समर में काफी गए थे अंशु आंटी के आइसक्रीम में। चलो आगे बढ़ते, एक ऐसे स्पॉन्सर के बारे में बात करते हैं जिनको प्रमोशन चाहिए ही नहीं था, वो बस रामायण को हेल्प करना चाहते थे, सपोर्ट करना चाहते थे, पर हमने कहा ऐसे कैसे। सो वी आर कंस्ट्रक्शंस, अगर आप कंस्ट्रक्शंस के बारे में सोच रहे हो, कुछ बनाने के बारे में सोच रहे हो, तो यू नीड टू कॉन्टैक्ट निलय धमलिया फ्रॉम वी आर कंस्ट्रक्शंस।
1: इनके साथ साथ MCK मनीष कम्युनिटी केयर, ये भी हमारे फ्राइडे शोज में वन ऑफ द स्पॉन्सर्स। और लोरेन जी, आज ही हमारी बात आपसे हो रही थी, यू विल मिस आउट ऑन रामायण क्योंकि यू हैव ट्रैवलिंग ओवरसीज, यू आर ट्रैवलिंग ओवरसीज, पर चलो देयर विल बी रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम MCK मनीष कम्युनिटी केयर। इफ यू समवन जो घर पे है जिनको केयर की जरूरत है, कोई बुजुर्ग है या कोई यंगस्टर भी है जिनको अभी पता है आपका लाइफ काफी बिजी रहता है, एंड शायद इफ यू कैन नॉट मैनेज योर कोप, तो ऐसे यहाँ पर न्यूजीलैंड में यू नो थ्रू गवर्नमेंट फंडेड ये होता है, तो MCK मनीष कम्युनिटी केयर, ये नाम जरूर याद रखिए।
0: अगर आप अपने डेंटल नीड्स के बारे में सोच रहे हैं, हम हमेशा सोचते हैं क्योंकि डेंटिस्ट्री इज सच एन एक्सपेंसिव थिंग ओवर हियर, द वन पर्सन दैट यू

0: go to is Blossom Dental, Priya Narangji. So agar aap apne dental needs ke bare mein soch rahe hain, be it kids or adults, try Blossom Dental.
1: Dental itne expensive kyun hota hai? 32 to daat hai, ek chala bhi jata kya kya hoga?
0: Wo hame Priya Narangji se puchna padega, itna expensive kyun, kyunki aap unke regular customer ho waise.
1: Hamara kya, hame kyun jana padta, kyunki hame log hamesha kehte hain ki aapka smile bahut acha hai na, to smile ko barkarar rakhiye.
0: फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के बारे में बात करें तो ऑल टाइम फेवरेट पीपी प्रोडक्शन एंड जेके इमेजेस रामायण के फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी यही कर रहे हैं.
1: इसके साथ साथ हमारे सोशल मीडिया पार्टनर्स इंडियन सोशल कल्चर क्लब और DNZ, गौरी जी तो हमारे साथ शामिल होने वाली हैं.
0: जी बिल्कुल, गौरी जी वुड रीच शार्प ऑन 19th फ्रॉम ऑकलैंड, सो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस फ्रॉम ऑकलैंड. साथ ही साथ ट्रियो इवेंट्स जिन्होंने अभी ऐश्वर्या मजबूतार का एक बहुत बड़ा गरबा किया था, दे ऑल्सो केम ऑन बोर्ड टू सपोर्ट रामायण, सो थैंक यू सो मच ट्रियो.
1: मीडिया पार्टनर्स जहां से बैठकर इस प्रोग्राम का संचालन हो रहा है, प्लेन्स मीडिया 96.9, इनके साथ साथ सारे जो प्रिंटिंग प्रोडक्ट्स है, आई थिंक क्राइस्टचर्च में कोई ऐसा होगा जहां पर प्रिंट प्रो के पास नहीं जाते. नीरव भाई एंड योर टीम, थैंक यू ऑलवेज सपोर्टिंग सारे जेवन से. ओके गाइज, जितने लोग हमारे साथ है आज, हमारे जो स्पॉन्सर्स है, प्रोबेबली वन फाइनल टाइम, हमारे जो रामायण के सारे जो स्पॉन्सर्स है, सपोर्टिंग स्पॉन्सर्स, इनके बारे में आपने सुना है. नेक्स्ट संडे से शायद हमारे साथ कोई नया स्पॉन्सर्स होगा. वेल, नेक्स्ट संडे के रामायण के बाद अगर हम यहाँ स्टूडियोज आ गए तो आपको ही पता चलेगा. चलो, पर आज ज्यादा समय ना लेते हुए हमारे साथ आज स्टूडियोज में वापस आ चुके हैं, हमारे साथ हर साल जब भी दुर्गा पूजा के, क्योंकि इट्स अ स्टार्ट कहते हैं, जो हमारा जो फेस्टिव सीजन जब भी स्टार्ट होता है, कोई भी कुछ कहीं पर स्टार्ट होता है, चाहे आपके घर पे हो, चाहे आपके मंदिर पे हो, माँ के आशीर्वाद या माँ के दर्शन के बिना नहीं शुरुआत होता है. एंड वी रेडियो केज इज वेरी फॉर्चुनेट दैट वी हैव गॉट द एंटायर टीम हियर टुडे. हेलो गाइस, कहाँ से शुरू करें, बहुत सारे हस्तियाँ हमारे सामने हैं, तो हमारे काफ़ी पुराने साथी, आपसे शुरुआत करते, कैसे हैं आप? सॉरी आने में थोड़ी देर हो गई यार.
2: कोई बात नहीं, थैंक यू क्रिश एंड जीबी. मैं अर्पण मंडल फ्रॉम क्राइस्टचर्च बंगाली कम्युनिटी इनकॉर्पोरेटेड, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का चेयरपर्सन हूँ.
1: अर्पण जी आप काफ़ी सालों से यू आर पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, राइट?
2: Yes, I am Bengali part of community. The community for the last 11 years.
1: Wow.
2: And even before that, means as a group, hum Durga Puja to kar rahe hain pichle 10 saal se. Lekin crisis mein hum hain 23 years se. So, hamare jo group hai, kafi purane aur naye sab tarah ke hain hamare group mein.
1: That's amazing. So, yes, ye awaaz ko zarur yaad rakhiye, jo log Facebook Live mein bhi jude hain. Agar aapka koi question hai, kuch sawal jawab hai, shoot, don't worry. Moving on to you, lovely ma'am, how are you?
3: Good, thank you.
1: I love the color. Wo jo color aapne yahan dala hai na, mujhe isme outfit dhoondna hai. मुझे अच्छा लगता है यूनिक कलर्स पहनने में, मेरे स्किन टोन के साथ बहुत अच्छा जाता है ना. थैंक यू फॉर लाफिंग. चलो, लेट्स टॉक टू यू मॉम. आप बताइए कि ये जो अमेजिंग टीम है, जो यू नो इतना हार्ड वर्किंग टीम है, आप इनके साथ हाउ आर यू कनेक्टेड विद दिस टीम?
3: I think amongst all I have been here the longest.
1: Oh wow.
3: Yeah. And also I happen to be the senior most member of the Bengali Community Inc. So isiliye isi tarah se hum jure hue in logo ke saath, and we have been celebrating Durga Puja, as they said this is going to be our 11th year.
1: Oh, if you don't mind me asking, aapne kaha ki aap sabse zyada saal, you probably been the longest member or the longest out of them in Christchurch. कितने सालों से आप नॉट जस्ट विद दिस टीम बट दुर्गा पूजा से ओवरऑल कितने सालों से कनेक्टेड है आप?
3: दुर्गा पूजा, वैसे ये टीम पूजा हमारे हो रहा है, जैसे कि दिस इज 11th ईयर, बट वी हैड सेलिब्रेटेड इन समवन एल्सस रेजिडेंस, सो इट वाज लाइक मोर लाइक अ प्राइवेट पूजा, बट ऑल ऑफ अस एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग इन दैट.
1: जी वाओ.
3: So that we used to celebrate one night, sometimes two nights. And it was like, food, music, the Bengali cultural stuff, and which is actually quite special.
1: Wow. I'll definitely come back to you and ask some more questions. Mm-hmm. And moving on to you, how are you? Welcome back. Kaise hain?
4: I'm good, Chris. Thank you so much for having us here.
1: Always a pleasure.
4: My name is Shobha, and as Arpan said, we have been in Christchurch for the past 23 years and been doing community work for that time. And we love doing this because we like to bring the culture to the community and

0: different. और हमसे बहुत लोगों ने पूछा है कि इसको कैसे drape करते हैं. So we thought as part of our cultural heritage जो हमको recognize किया है Christchurch City Council ने कि दुर्गा पूजा is a heritage festival. As part of that, we want to extend this and help people who want to come authentically ready कि हम बंगाली साड़ी पहन के जाना चाहते हैं उनके लिए हम एक वर्कशॉप कर रहे हैं. सो वर्कशॉप का डेट है 3rd of October and that will be around 6:30 PM to 8 PM. So bring your own sari and we will teach you how to drape it in Bengali. We'll do some photo sessions and you know reels and things like that. And we want you to learn it because बहुत लोग चाहते हैं वैसे wear करके आने के लिए but वो नहीं जानते हैं कि कैसे करना है. So that's the workshop we are doing.
1: Shobhaji, I'm assuming it is happening from Multicultural Center.
0: That's correct. Yes, Jami? The venue is multicultural.
2: जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं हम आप सबको भी एक बार याद कर लेते हैं. दिलिश मैथ्यू, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए. मोहिनी पुरी, कैसे हैं आप? रिका नारायण जी, आपका भी स्वागत करना चाहते हैं. गीता कोपारूपू, गीता जी कैसे हैं आप? शंपा आद्री जी, आपका भी स्वागत करना चाहते हैं. सुनन्या मुखर्जी जी, कैसे हैं आप? आपका भी स्वागत करना चाहते हैं. आप मल्टीकल्चरल के बारे में बात कर रहे थे. मल्टीकल्चरल हैज बिकम लाइक अ सेकंड होम फॉर अस क्योंकि हम हर वेंसडे और हर संडे रामायण का प्रैक्टिस वहीं पे करते हैं.
1: हमारा तो सेकंड होम है, इनके लिए इनका पहला होम है. जब भी मिलते वहीं मिलते.
0: हमारा भी प्रैक्टिस कल आपको मिले थे, हम वहीं पे हो रहा था.
1: आई लव्ड इट हाउ द किड्स एंड ऑल वर देयर. इंद्राणी, आपका पहला दिस इज योर फर्स्ट टाइम यू नो इस टीम के साथ काम करने से इन नोइंग कि ये दिस वाज द फर्स्ट टाइम या पहले भी यू हैव बीन इन्वॉल्वड इन एनीथिंग लाइक दिस?
3: नॉट डायरेक्टली, पर कोलकाता में तो सो कोलकाता में द होल फेस्टिवल इज ऑब्जर्व्ड इन अ लिटिल unconventional way because it's not just the puja that we are you know like involved into, we are also looking into the fun part. So hum zyada tar hamari attention food pandal hopping in sab cheezon mein hoti hai aur it's on the elders who look after the puja aur hamari to itni chhoot thi ki hum bas ghoomte rahe. Yahan aa gaye samajh pada ki nahi ab hum wahi elder group mein chale aaye hain and now we have to take the serious role. So it is very different for us in that way. So directly to kabhi involved nahi hue hai, so we are learning and it will be a journey of course.
1: But how's that going up till now, abhi tak, you know, jo, because I'm assuming you've been to few meetings, a few get togethers, how's that experience going?
3: It was very good. I was coming, they were telling me that since you have come we're just rehearsing so you probably haven't got any time to see Christchurch, but I said ki because I got this chance, this is a better way to see Christchurch through a different in different eyes actually. Aur mujhe bahut achhi, and it's a blessing to get a community, a support of the community. So because otherwise it's just me and my husband and my son, so we get to see each other enough. So
1: I hope your husband is listening.
3: Yeah.
1: Arpan, let's go to you. Arpan, I mean you have the poster ready over there. Jab hum whenever bringing anything aasan nahi hota hai, personal experience se baat kare bhi ramayan ka journey, kyunki abhi the moment kuch bhi aap ghar se bahar nikalte, the moment you step out it's money, it's finance. So aapke jo ये इवेंट के लिए हमारे आपके जो स्पॉन्सर्स हैं, डू यू आल्सो वांट टू गिव अ शाउट आउट टू देम? क्योंकि यस, विदाउट देम दिस वुड नॉट इवन पॉसिबल.
4: यस, वी आर रियली थैंकफुल फॉर गेटिंग द सपोर्ट ऑफ गोल्ड बैंड टैक्सेस एंड स्क्विरल, एंड दे हैव बीन, दे आर योर प्लैटिनम स्पॉन्सर्स दिस ईयर. दे वर आल्सो इन्वॉल्वड विद अस लास्ट ईयर एज वेल एंड वी आर रियली थैंकफुल फॉर टू देम.
1: Oh, that's good. You know, आपके जो स्पॉन्सर्स हैं इनके साथ साथ आपके मीडिया पार्टनर्स जलसा फीजी रेडियो जो हमारे साथ यहीं स्टेशन में साथ में करते हैं, ऑफकोर्स रेडियो कहे जय लोकल, क्योंकि मीडिया का यहाँ पर जब हम क्राइस्टचर्च में देखें, यस कंपेयर टू अदर प्लेसेस ऑकलैंड एंड पेबरी इंडिया फीजी, मीडिया रेडियो इट्स नॉट ग्रोन सो मच, बट एट द सेम टाइम अगर आप इस प्लेटफॉर्म से, चाहे हम हो चाहे जलसा फीजी रेडियो हो, आप दो लोगों को भी इन्वाइट दे रहे हैं, दैट इट्सेल्फ माता रानी के काम ही कर रहे हैं. मैम आपके पास चलते हैं our final round of questions. Silly from you, कहते हैं कि जब हमारे बड़े बुजुर्ग कुछ बोलते हैं ना तो हमें सुनना चाहिए, हमें मानना चाहिए, हमें उसे फॉलो करना चाहिए. तो चलिए आपकी तरफ से एक प्यारा सा इन्वाइट हो जाए, जितने लोग देख रहे, फ्रॉम यू लाइक इन्वाइटिंग एवरीबॉडी टू कम बी पार्ट ऑफ दिस एक्सपीरियंस. एंड अर्पण, वेन वी कम बैक टू यू, अगर कुछ ऐसा नहीं है जो हमने नहीं कवर किया, प्लीज डू दैट. एंड शोभा, इंद्राणी, अगर इफ देयर इज नथिंग, समथिंग वी हैव नॉट कवर्ड, द फ्लोर विल बी ऑल योर्स. सो विल स्टार्ट विद यू.
5: यस, वी आर इन्वाइटिंग Christchurch. We are inviting Christchurch. So anybody, any age, any community, please do join us. And if you want to know about Durga Puja, what it is about,

0: One of them is throughout the festival, which is dhak, the Bengali drum. So that will be throughout the festival days, beating. Everybody can listen to it, and that itself gives us a goosebump. And there will be Shidur Khala, which is exchange of vermilion between women to celebrate joy, blessing, happiness, and everything. And of course, Ma. So yeah, that will also be there as part of the celebration.
1: क्या बात है अर्पण जी हमारे फिजी में यहाँ कहते हैं अगर आप फिजी गए और कोकोनट नहीं खाया तो कहाँ फिजी गए. तो अगर बंगाली टीम हमारे पास आए हैं बताने के लिए और अगर हमने ऑथेंटिक बंगाली लैंग्वेज नहीं सुना तो फिर मज़ा ही नहीं आएगा. तो आपके आखिरी जो यू नो जो भी आप हमें बताने वाले अगर हो सके तो प्लीज़ आई लव लिसनिंग टू बंगाली
2: बंगाली में बोलूँ
1: जी. हाँ जी
2: बिल्कुल. ओके
1: समझ जाएंगे लोग दिल की बात है ना.
2: আপনাদের সকলকে আমরা নিমন্ত্রণ করছি. আমরা 17th অক্টোবর স্যাটারডে অ্যাট মাল্টিকালচারাল সেন্টার হ্যাগলি পার্ক ফ্রম 9 AM টু 9 PM. ইটস এ ডে ফুল অফ অ্যাক্টিভিটিস স্পেশালি ফর দ্য কিডস. দেয়াল বি পিস ট্রেন, দের উইল বি ম্যাজিক শো, there'll be other activities for the kids. Or other than that, there will be also nothing, means no festivities can be complete without good food. So you'll have a taste of Bengali food brought to you from the Christchurch Bengali community, a true taste of Bengali food. And the last thing is there'll be a good cultural event, a lot of special items in our cultural event. So see you all on the 17th of October at Hagley Park. And I'm thanking you, thanking Squirrel as Platinum sponsor and Gold Band Taxis. And I'm also thanking you, Krish and GB from KJ Local to help us share this event and the details and sharing with the community.
1: थैंक यू अर्पण जी. वी विल ऑल्सो कवर द पोस्ट. और जैसे अर्पण ने कहा और एंटायर टीम ने कहा है कि द टेस्ट ऑफ बंगाल कमिंग राइट हियर. पर वेल माय कनेक्शन टू बंगाली कल्चर और बंगाल ओवरऑल इज क्योंकि आई लव म्यूजिक. और जब हमें पता चला है कि किशोर कुमार और कुमार शशानू दोनों ही बंगाल से ही, तो आई वॉज लाइक मस्ट बी अ लैंड ऑफ वेरी गुड सिंगर्स. सो ऑफकोर्स उस दिन हम आएंगे तो वी डेफिनेटली हियर अ फ्यू सॉन्ग्स. एंड जैसे आपने कहा देयर इज अ लॉट हैपनिंग. बट टू द एंटायर टीम, आप लोगों को हमारी तरफ से Radio KJ ke small family, me, GB, our Radio KJ family, we like to wish you guys all the very best. And definitely at one point of time, we'll come and celebrate this with you. And kabhi bhi kuch bhi, whenever there's anything, just reach out. We are more than welcome to, you know, more than happy to welcome you guys. And isi tarah aap logon ke saath celebrate kare. Thank you. Thank you, guys.
3: Thank you so much,
1: Krish
3: and Jibby.
4: Thank you.
1: Thank you. So, guys, that was the Christchurch Bengali community with us. Or, jaise aapne suna, jo Durga Puja aa raha hai, make sure you go there and, you know, be part of it. Okay, chale, jab hum geeton ke bare mein baat karte hain, to jaise humne kaha ki jab bhi hum songs ya music ke bare mein sunte hain, hume yaad aa jata hai one of my favorite, the late Kishor Kumar. Inke awaaz mein, chale, aaj is geet ki saath aaj hum aagaaz karte hain. Jitne log hamare saath sun rahe hain, aap sabhi ka hum ek baar phir swagat karna chahte hain. Listening to Radio KJ Local only on
5: Plains Media 96.9.

0: जी हाँ बिल्कुल, आज हमारे साथ स्टूडियोज में काफ़ी रौनक छाई हुई है क्योंकि हमारे साथ सामने बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा जो पोस्टर है, जब भी जो लोग अभी पोस्टर नहीं देख सकते हैं, आप अगर माता का ये जो सुंदर सा दर्पण, यहाँ पर ये एक ऐसा चित्र है कि फॉर मी बीइंग अ हिंदू, एवरी टाइम आई क्लोज माई आईज एंड पीपल जब भगवान का नाम करेंगे ना, राम जी करेंगे तो मुझे राम दरबार दिखाएगा, बट जब एवरी टाइम जब भी दुर्गा माता के बारे में आई डोंट नो मुझे ये विजन क्यों देखता है, मे बी मैंने इतनी बार देखा है, एंड आई थिंक कहीं पर भी आप जाओ, दिस द वे माता इज लुकिंग एट यू एंड यू फील सो कनेक्टेड कि यस आई एम लाइक डीप इन माता'स आईज एंड आई एम फीलिंग कनेक्टेड कि यस आई एम गेटिंग द ब्लेसिंग देयर।
1: एब्सोल्युटली क्रिशी, जैसे हमने बोला बॉर्न इन अ वेरी स्ट्रिक्ट क्रिश्चियन फैमिली, जहाँ पर हमारा जो पूरा लाइफ है या जिंदगी है सिर्फ चर्च में आना या चर्च में जाना, आई कुड नेवर ग्रोइंग अप कनेक्ट विद हिंदू कल्चर और हिंदू रिलीजन एज सच, बट देन वेन हम हॉस्टल में गए या पढ़ाई करने के लिए बाहर निकले घर से, आई हैड सो मेनी फ्रेंड्स हु आई कुड कनेक्ट विद, एंड देन क्रिश जी से मिलने के बाद, क्योंकि इनका इतना ज़्यादा ज्ञान है, ये रामायण प्रीच करते हैं जितने भी लोग जानते हैं, एंड एक एक कहानी जो ये एक्चुअली बच्चों को सुनाते हैं, हर रात को जब घर पे लोगों के स्टोरी बुक्स रीड होता है, हमारे घर पे ये बच्चों को रामायण की स्टोरीज सुनाते हैं या कृष्णा राधा की स्टोरीज सुनाते हैं या माताओं की स्टोरीज सुनाते हैं, विच ऑल्सो ड्रू माई इंटरेस्ट इन ऑल दीज थिंग्स एंड द रिलीजन। वेरी सरप्राइज कि हमारे पापा आजकल हमें रामायण की स्टोरीज भेजते हैं, जो आज आए नहीं, विच इज आई एम वेरी सरप्राइज एंड वेरी इम्प्रेस्ड एंड आई एम प्राउड ऑफ यू पापा के थोड़े बहुत चेंजेस आई कैन सी इन माई फैमिली एज वेल, हु इज अ वेरी स्ट्रिक्ट क्रिश्चियन फैमिली, के पापा जब से हमने रामायण की शुरुआत की है पापा हमें रामायण के वीडियोज भेज रहे हैं या बोल रहे हैं कि बेटा तुम ऐसे कर सकते हो या वैसे कर सकते हो, विच हमारे घर पर पहले बहुत स्ट्रिक्ट था कि ऐसा कुछ बात नहीं होता है। तो यस, दुर्गा माँ के बारे में बात करें, आई फील कि हर बार जब हम दुर्गा पूजा में, यूजुअली वी कम द नाइट बिफोर टू यू गाइस, जो मूर्ति होता है वो जो एनवायरमेंट होता है, वो जो खुशबू, आई डोंट नो व्हाट डू यू कॉल दैट, द स्मेल, द अरोमा, पुजोर गंधो, द अरोमा, द स्मेल, इट जस्ट ड्राइव्स यू सो मच क्लोजर टू एवरीथिंग। रामायण के वानर सेना के लिए मेरे बच्चे ले जाते, दे आर रियल वानर्स, आउटफिट की भी जरूरत नहीं। जगी
0: जी आपने कहा वानर सेना, रियल वानर, तो मुझे एक जो चीज बोलने में बहुत मजा आता है, लगता है बाप पे गए। चलो जब हम बात करते हैं, हमारे पास क्राइस्ट चर्च बेंगोली कम्युनिटी से एक मैसेज आया, हम अज्यूमिंग किनसे हमारी बात होती है, जस्ट स्लिप पे,
1: क्राइस्ट चर्च दुर्गा पूजा 2026 एट क्राइस्ट चर्च मल्टीकल्चरल रिक्रिएशन कम्युनिटी सेंटर 455 हैगले एवेन्यू, इन्होंने पूरा डिटेल्स दे दिया ताकि सब जाके यहीं पे मैसेज चेक कर दे, एंड वी वुड लव टू सी द सेलिब्रिटी कपल द ब्यूटीफुल जीबी आइजक जी, वी विल डेफिनेटली कम एंड अटेंड।
0: पर आपने जो भी कहा है कि आपके पापा इज मोर कनेक्टेड towards Hindu religion because of maybe you know mere karan, तो अभी जैसे हमने कहा देखो चेंज हो रहा है, जैसे लेडीज जब आगे बढ़ के, तो अगर घर में सुंदर और सुशील बहू आ सकती है तो सुंदर और सुशील दामाद क्यों नहीं आ सकता है?
1: बिल्कुल आ सकते हैं,
0: आ सकता है ना,
1: आ सकते हैं।
0: अर्पण जी आश्रे,
1: उसी तरीके से मम्मा आप आ गए हो फीजी से,
0: she's listening।

0: पिताजी ने भेजा है। तो फिर कौशल्या माता ने उनसे सवाल किया कि पर पिताजी की बात तुमने सुना, अपने माता से परमिशन नहीं लोगे? तो राम जी का जवाब क्या था ना कि माँ ने तो परमिशन दे दिया। उसने कहा मैंने कब दिया, नहीं आपने नहीं, कैकेयी माता ने दे दिया। एंड कौशल्या ने एक भी सवाल नहीं किया क्योंकि कैकेयी माता, हाँ कैकेयी माता भी माता की तरह है। तो माओं का दिल आई थिंक बहुत ही यूनिक होता है। और
1: जग्गी जी स्पॉन्सरशिप कैंसिल मत करना, आपको वानर सेना
0: जिसको मैंने बोला लगता है बाप पे गया, उधर से मैसेज आया वाह वाह गुड कमबैक स्पॉन्सरशिप कैंसिल कैंसिल कैंसिल। सो ये हमारे शो में यही हंसी मजाक होता है ना, आई थिंक इट्स गुड टू हैव अ गुड लाफ
1: एंड
0: वेरी इंपॉर्टेंट
1: एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल टू आवर स्पॉन्सर्स एक्चुअली, क्योंकि आप लोग आते हो हमारे साथ मस्ती भी करते हो मजाक भी करते हो और हमें पैसे भी देते हो शो रन करने के लिए, थैंक यू सो मच करने के लिए। क्राइस्टचर्च बंगाली कम्युनिटी ने मैसेज किया है ग्रेट डिस्कशन एंड डू जॉइन क्राइस्टचर्च दुर्गा पूजा एट क्राइस्टचर्च मल्टीकल्चरल सेंटर, यू विल हैव एन अमेजिंग एक्सपीरियंस
0: डेफिनेटली। फ्राइडे शाम को हम आएंगे, मेरी अर्धांगनी को क्या महक क्या इनको पसंद है,
2: हाँ,
0: और मैं उस दिन वहाँ जाता हूँ क्योंकि बाय द टाइम आई गेट देयर वहाँ एक और भी महक आने लगता है तो बहुत जरूरी होता है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो आई ऑलवेज गो देयर एंड एंजॉय द फूड, नॉट एक्चुअली आई आल्सो एंजॉय द कल्चरल पार्ट ऑफ इट। सो गाइस दैट्स इट, ऑलमोस्ट टाइम फॉर अस टू गो, पर जीबी इट वाज अ ग्रेट शो टुडे एंड काफी कुछ सीखने को मिला एंड होपफुली हमारे संडे शोज में मे बी विल सी अगर हम ऐसे कम्युनिटीज हैं। एंड शोभा यू आर मोस्ट वेलकम, किसी और दिन अगर आपको समय मिले कम लेट्स टॉक अबाउट साड़ी ड्रेपिंग एंड मे बी गेट यू नो वन ऑफ योर मॉडल्स विथ यू एंड विल ट्राई समथिंग इन द स्टूडियो जस्ट टू गिव अ ग्लिम्स ऑफ पीपल की व्हाट दे कैन एक्सपेक्ट।
1: वंस अगेन जो बंगाली साड़ी ड्रेपिंग हो रहा है वो हो रहा है 3rd of October को, डिटेल्स टू फॉलो। एंड साथ ही साथ जो दुर्गा पूजा हो रहा है क्राइस्टचर्च दुर्गा पूजा मल्टीकल्चरल से हो रहा है, ये हो रहा है सैटरडे 17th October 9 AM to 9 PM। तो पूरे दिन का आपको कोई प्लान बनाने की जरूरत नहीं, पूरे फैमिली के साथ मामा पापा बच्चे सब लोग आ जाइए 9 AM to 9 PM एट क्राइस्टचर्च मल्टीकल्चरल।
0: एंड इनके प्लेटिनम स्पॉन्सर्स जो है स्क्वायरल, इनको भी हम थैंक यू से दिल से शुक्रिया कहना चाहेंगे। गोल्ड ब्रेन टैक्सेस, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग दिस इवेंट, इज आल्सो सपोर्टेड बाय क्राइस्टचर्च सिटी काउंसिल इंडियन जो हमारे पब चैरिटी है, इसके साथ साथ ऑफ कोर्स आवर सोशल मीडिया पार्टनर्स जलसा फिजी रेडियो एंड रेडियो के जे लोकल। सो नाम याद रखिए, ये दुर्गा पूजा ये हो रहा है 17th को from 9 a.m. all the way till 9 p.m. free parking, free food और इनके साथ साथ prizes बहुत कुछ जीतने को आपको उस दिन मिलेगा। So guys that's it, हमारे जो frequency पे हम यहीं पर sign off हो रहे हैं। नीरज जी अगर आप इंतजार कर रहे थे आपका song का, कोई नहीं, Friday को हम बिल्कुल आपका song बजा देंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। This is your host RJ Krish signing off with a very beautiful, with a very gorgeous
1: RJ Beam, bye.